बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनाओ सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: California. Extreme energy drink.
1: निकट माता दी बहिनी, विकट माता दी बहिनी।

0: नहीं तायो कागज के में थी वा
1: आ चिल्काई
0: कई पर्सनल नंबर ब्लॉक लाई वधी
1: पर्सनल मोबाइल नंबर में उन्हीं यो टेलीकॉमर बे ऑफिस तरी आई रा ब्लॉक लाई रखा खाई
0: अन्य बैंगरी
1: बैंगरी
0: आ
1: चार सही तली लग पड़ दी
0: सम लग पड़ी ना आपने ना मोबाइल नंबर फिर दिया वधी रा ब्लॉक तये विषय आपने बैंक दे भी नहीं जानकारी पिन परिम दे आपने बैंक खाते ना जानकारी और ही ना योरी थोनी देखा सचेत तल परिम
1: सतर्क तना ठगी तब द क्या जोगी ना
2: सिद्धार्थ बैंक र क्या ले जन हितरी जारी संदेश
3: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरी लाई।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 9 बज्यो।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: समानता र महिला अधिकारको लागि बुलन्दित आवाज रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले साँझको ठीक छ बजे